0: तुमको भाभी
1: छिमी बोगे ले उलू हमारो तो नहीं लें ता सच्चे माता उसे ले हुए ही फलों से तिवरी से ये तो तुल्यारा दे आकु नहीं मुझे छिमन दे या जब जब मुसारे के जैसे सच्चे कुमाते लो तिवरी स्तुको जैसे सने सच्चे केरेट हम उन उलू मलाक हम जोफ्तो ने निकलो जिंदगी ने फसाई पमारु चाकु हुना ही निकलो आकु अविलिमुरा चिले तक ले उलू मुझे के छिमी बोगे सच्चे अंसानो माता उसे ले विरी से Zezan mahatunga na itaraiko kumateluan virus tu tiba hoga. Madagascar, njenina fa atu yansimu antuliara musare.

0: क्लास तुम काफी।
1: आनक एच आर मथुरी रद्यमान सम्मान अरे क्यों मास्ट।